देवपूत धृत शंख चक्र हरि हिरण्यवपूर धृत शंख चक्र ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरंधकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु।

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंड हैं। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोलते थे पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंड हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।